दुई पटक बैग अफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटीजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटीजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।

0: मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
1: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
2: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
0: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
1: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
0: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
2: सुन्नुहोस् त,
1: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
3: वन डडेलो रोकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
0: अनुरोध
4: अध्यक्ष गणेश बहादुर सिंह ठकुरी, श्रृंगी घाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, गुन्ची, कपिल वस्तु। सम्पर्क नम्बर 98570-52001।
5: न डेराओ बाबु, न डेराओ। साँप का कुछ न करे तक साँप कुछ नहीं करत है। अच्छा वो देखो, वो आपन रास्ता चली गवा कुछ की तो, और सब सांप विशालु नहीं होते है ना।
6: विशालु हो कि नहीं, कैसा चिन्ह है अम्मा?
5: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विशालु सांप के बारे में सुनो। एक होते करेंट जोन प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है। एक दशक बाद ना ही पिरा सकत है, लेकिन दशक बाद शरीर के भाग न चलक मेर से सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहवन अर्थात फेटारा, जोन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत हैं। गोहवन सांप दिन या रात दोनों ओकर दिखाते हैं, और प्राय सवेरे संझा के दिखाए वाले एकरे दशक बाद पक्षघात हो सकत है।
6: अच्छा,
5: और दूसर होते हैं हरियो जात के सांप, एकरे दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुते पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होत है, एकरी दसाई के बीमारियां कमे मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दसाई एकदम खतरनाक होत है।
7: बसायाम और बाली काटे समय में सांप की कटाई अथवा दसाई के घटना सब बहुत होत है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दसाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
8: ढेर जैसे सांप के दसाई हानिकारक नहीं होते, तब वो सांप दसिल रिज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहिए।
7: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
9: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
10: मार्नु आमा, मार्नु, नत्र टोक्छु यसले।
11: नात्यौ छोरा, सर्पलाई केही नगरेसम्म सर्पले केही गर्दैन। ल, ऊ आफ्नो बाटो गइहाल्यो नि, केही गर्यो त? अनि सबै सर्प विषालु पनि हुँदैनन्।
10: विषालु हो कि होइन कसरी चिन्ने त आमा?
11: ल, नेपालमा पाइने विषालु सर्पका बारे सुन। एउटा हुन्छ करेत, जुन प्राय रातिको समयमा घरभित्र छिर्न सक्छ। यसले टोक्दा नदुख्न सक्छ, तर टोकेपछि सासै फेर्न नसक्ने गरी पक्षघात हुन सक्छ। अर्को हुन्छ गोमन, जो निकै रिसा खालको हुन्छ र फणा बनाउँछ। गोमन सर्प दिन वा रात दुवैमा देखा पर्ने र यसले टोक्दा पनि पक्षघात हुन सक्छ। अनि अर्को हरियो जातिको सर्प, यसले टोक्दा टोकेको भाग सुन्निन्छ र असाध्यै दुख्छ, रगत पनि पातलो भई रक्तस्राव हुन सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो देशको तराईको सबै भूभागमा पाइने बाघको जस्तो बुट्टा हुने बाघी सर्प। यसले डसेको बिरामी कमै मात्र पाइन्छ, तर यसको डसाई एकदम खतरनाक हुन्छ।
12: वर्षायाम र बाली भित्राउने समयमा सर्पको टोकाई अथवा डसाईका घटनाहरू धेरै हुने गर्छन्। बाढ़ी र अरू प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले सर्पको वासस्थान नाश हुँदा सर्प डसाईका घटनाहरू बढ़ी हुने गरेको पाइन्छ।
13: धेरै जसो सर्पका डसाई हानिकारक हुँदैनन्, तापनि सर्पले डसिहाले तुरुन्तै नजिकैको उपचार केन्द्र गइहाल्नुपर्छ।
12: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
9: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: চকর লাগনে লুতু দাস পুতলে দুবে চায়া ডন্ডিপুর পুরানো গাউ খটিরা ইউন দুর্বলতা সেতো পানি বগ্নে ইউনাঙ্গ ঘাউ খটিরা কপাল রং ঝরি রহনে হাড় জোর্নিকা সমস্যা প্যারালাইসিস জোর্নি দুখনে নচলনে নসা চাপিয়ে ঢাল কম্মর দুখনে মেরুদণ্ড রুড়া সমস্যা লিগামেন্ট চ্যাতিয়ে ভাঁচিয়ে হাড় জোর্নিকা বিশেষ অপরেশন রোগ সঙ্গ সম্বন্ধিত সবাই সমস্যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা যাঁচ তথা উপচার করছ
1: সম্পর্ক পাল্পা ভৈরব মেডিকাল হল সাজা হসপিটাল আগাড়ি
0: সম্পর্ক নম্বর 071534905 071553905 র মোবাইল 98570178010
2: মেরো তো ঘর বনাউনে ধোকো পনি অরুকো দেখদা দেখদে সকিও त्यो हरिदाईको घर हेर्दा राम्रो भएर के गर्नु धाराका पाइपहरू सबै फुटेर नुहाउने बाथरूम किचन टोयलेट गइसक्नु छैन मलाई त झन् केही थाहा छैन कस्ता पाइप धारा ठिक हुन्छन् फेरि त्यति मात्र भएर पनि भएन छड सिमेन्ट पनि चाहियो साह्रै तनावको काम रहेछ
3: हजुर यस क्षेत्रकै विभिन्न क्वालिटी युक्त हार्डवेयर सामानका लागि ग्रिसमा सप्लायर्स सबैको रोजाइमा रहेको पञ्चकन्याका सिटिडिसी पाइप फिटिङका सामानहरू धाराका आइटम अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका छड सिमेन्ट पानी ट्याङ्की कम्बर्ट सिटहरू मार्बल सोमानी कम्पनीका टाइल होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ
2: हजुरलाई समय पनि कम लाग्ने हरेक सामानहरू फिट गर्न सजिलो हुने पाइपहरूमा खिया लाग्ने र चुहिने समस्याको समाधान
4: सुन्नुहोस् त हामी कहाँ टाइल ग्रेनाइट ड्रेन काडो बाथ फिटिङ सेनेटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है
3: सम्पर्क ग्रिसमा सप्लाइज बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु फोन 076550317 मोबाइल 98571 713 संचालक गिरिराज गणेश

0: ना डराओ बाबू ना डराओ, सांप का कुछ ना करे थे, सांप कुछ ना ही करत है। अच्छा वो देखो वो अपन रास्ता चली गवा कुछ की तो, और सब सांप विशालू ना ही होते है ना।
1: विशालू है कि नहीं, कोई सा चिन्ह है अम्मा?
0: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विशालू सांप के बारे में सुनो। एक ठो होते करेंट जोन प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है, एक दशक बाद ना ही पिरा सकत है, लेकिन दशक बाद शरीर के भाग न चलेक मेर से, सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहवन अर्थात फेटारा जोन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत है। गोहवन सांप दिन या रात दोनों ओकर दिखाते हैं, और प्राय सवेरे संध्या के दिखाए वाले एक दशक बाद पक्षघात हो सकत है।
1: अच्छा,
0: और दूसर होते हैं हरियो जात के सांप, एक दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुत पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होते है, एक दशाई के बीमरिया कमय मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दशाई एकदम खतरनाक होते है।
2: बरसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दशाई के घटना सब बहुत होते है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होते के सांप दशाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
3: ढेर जैसे सांप के दशाई हानिकारक नहीं होते है, तब वो सांप दसिन लीज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहिए।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
4: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: के छ हो सुनुस भाई, भाले बोकेर कता
6: भाकल?
5: के को भाकल हो?
6: सुन्तलीका जिउमा दाग आएर हाथ खुट्टा पनि झन्झम गर्छ भन्छ, जान्नेलाई देखाएको देउताको श्राप लागेर यस्तो भाकल, त्यसैले भाले चढाउन
5: यस्तो पनि हुन्छ
6: भाडा हिँड्न ल हेर्नेस है।
5: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ, शरीरमा यस्तो रातो खुसो दाग देखिनु, अनुहारको छाला तथा कानकुलोती बाक्लो हुनु, शरीरमा गिर्खार देखा पर्नु, दागमा छुँदा थाहा नपाउनु, मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन्। तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्।
6: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त?
5: यो देउताको होइन, कीटाणुको करामत हो।
7: भाकल साकल छोडौँ धुर्मु, उहाँले भने आफै जतार औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ के?
8: कुष्ठ रोगको समयमै उपचार गरौँ, अङ्ग भङ्ग हुनबाट बचौँ बचाउँ।
9: जनहितका लागि जारी सन्देश, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग।

0: त्यसपछि तौलियागा रोड हुँदै 2 किलोमिटर अगाडि जानुहोस्। त्यहाँनिर ठूलो बोर्डमा युनाइटेड हस्पिटल लेखिएको छ, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको समस्याको समाधान भइहाल्छ नि। अनि दिदी, युनाइटेड पहिलाको जस्तो छैन नि, अहिले त धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ। तपाईँलाई जे समस्या भयो त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुने भएकाले कुनै चिन्तै लिन पर्दैन।
1: हजुर, विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट चेक जाँच हुने जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न एकमात्र अस्पताल युनाइटेड हस्पिटल बारगुङका चार ठाकुरापुर र झुङ्गाको बीचमा। यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर सहित दैनिक ओपिडी सेवा, पेट छाती मुटु तथा सुगर रोग विशेषज्ञ सेवा, हाड जोड्ने सम्बन्धी हड्डी भाँचिएको रडहरू राख्ने निकाल्ने, महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा, मेजर अपरेशनहरू, एपेन्डिसाइटिस, पाठेघर फाल्ने, हर्निया, पित्त थैलीको ढुङ्गा निकाल्ने, चिरेर बच्चा निकाल्ने लगायतका साना ठुला अपरेशन
0: 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ।
1: नभुल्नुहोला 100 रुपियाँ
2: विस्तृत जानकारीका लागि युनाइटेड अस्पताल बारगंगा चार ठाकुरापुर कपिलवस्तु, फोन 076550200, मोबाइल 98575551138।
3: सिद्धार्थ नगर सिटी हस्पिटल द्वारा गरिब विपन्न तथा न्यून आय भएका बिरामीहरूको लागि सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सस्तो सुलभ कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध सेवाहरू सस्तो सुलभ ओपिडी, सस्तो सुलभ वार्ड, सस्तो सुलभ आईसीयू तथा एनआईसीयू सेवा, सिटी स्क्यान, ल्याब, यूएससी, एक्सरे, इन्डोस्कोपी सेवा, सस्तो अपरेशन प्याकेज। सस्तो सुलभ कार्यक्रमका विशेषताहरू: निम्न शुल्कमा उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिने, बिरामीको संख्या अनुसार नर्सिङ स्टाफको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधि सहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान, अनुभवी डाक्टरद्वारा परामर्श, स्वच्छ सफा परिवार मैत्री वातावरणमा छिटो छरितो सेवा। सम्पर्क सिद्धार्थ नगर सिटी हस्पिटल, माया देवी 8 भैरहवा रूपन्देही, मोबाइल 97464-0249। पुनश्च सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि बिहान 7:30 देखि 9:30 सम्म टिकट लिइसक्नु पर्नेछ।
4: सूचना निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सम्बन्धी सूचना।
5: नवीन निशुल्क जलन सर्जरी तथा परामर्श शिविर सम्बन्धी सूचना।
4: लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नबिल बैंक र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा नबिल निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ।
5: मिति 2083 वैशाख 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म।
4: स्थान: राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ।
5: उपचार हुने मुख्य समस्याहरू:
4: आगोले पोलेर शरीरको भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने,
5: पोलेका कारण हात खुट्टाका औलाहरू टाँसिएको,
4: पोलेर टाउको कपाल घुमेको,
5: एसिड आक्रमण वा विस्फोटनमा परि जलन भएका,
4: जन्मजात हात खुट्टामा 5 भन्दा बढी औला भएका वा पैतला भित्र फर्किएका।
5: विशेषता:
4: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जनद्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
5: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखा सम्पर्क गर्नुहोला।
4: विस्तृत जानकारीका लागि 98513500076 अथवा 98412553555।
6: ए विवेक, घर प्रभार घाँस क्यों न जाओ?
7: अरे बाप रे बाप, मरिगान मरिगान।
6: ए साथी लोग, तोरे लोग एक छिन फुटबॉल बंद करो तो वो देखो विवेक के का होगा। घर झाड़ी को न जाओ कहे रहे,
8: वो दिखाओ सब भाग गया उहर। विवेक का काट लिस की का हो? उफ, स्कूल के फुटबॉल देखे आए रहन और केस दुर्दशा आए पड़ा।
7: अरे अम्मा तो साफ काट लिस, अब मर जावा।
6: विवेक ढेर ना घबराओ साथी। अच्छा शांत होई के ढेर हिल डोल ना कह के बैठो, तुमका हमारे स्वास्थ्य केंद्र पहुँचावा जी। ए पारस, वहाँ घर के भैया का मोटरसाइकिल लेके आओ कहो तो।
8: हाँ, विवेक का ही खुला जगह पर सुताओ, ढेर हिलावे डोलावे न कह के। हम यही काफी से हाउकी थे, गठिया के कुछ निचवा काटे है, फूला थे, काटे लिया जगह का छुए और चलावे न ही चाहिए।
6: अब हम विवेक का सहज हुए कह के ओकर कसा पेटी बटन सब खोल दी थे और घड़ी और अंगूठियों निकाल दी थे।
8: बहुत है रोशन, हम इधर विवेक के जूता और मोजा धीरे धीरे निकाल देते हैं।
9: ढेर जैसन सांप के जसाई खतरनाक नहीं होते, समय पर उपचार कई मिले पर विषालु सांप काट लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है। सांप काट लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में पहुंचाई दिए से उनके बरबार क्षति होए से बचाई सका जात है।
6: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहीं के पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
10: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: चाहिए।
1: अब हम विवेक का साहस हुए कहके ओकर कसा पेटी बटन सब खोल दी है और घड़ी और अंगूठियो निकाल दी है।
0: बहुत है रोशन, हम इधर विवेक के जूता और मोजा धीरे धीरे निकाल देते हैं।
2: ढेर जैसन सांप के जसाई खतरनाक नहीं होते है, समय पर उपचार कई मिले पर विषालु सांप काट लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है। सांप काट लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में पहुंचाई दिए से उनके बड़वार क्षति हुए से बचाई सका जाता है।
1: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करें और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगाएं, आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
3: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
4: Radio. Buddha Awaz.

0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए म चाहिँ

0: मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
1: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
2: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका टुटाहरू जथाभावी नफालौं।
0: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
1: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
0: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
2: सुन्नुहोस् त,
1: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
3: वन डडेलो रोकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
0: अनुरोधक
1: अध्यक्ष मुक्त बहादुर कार्की, मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बारगंगा दुई नन्दनगर कपिल वस्तु। सम्पर्क नम्बर 98 470 83 104।
4: नरेश भैया, आपके फोन आवे के बाद हम दौड़ के चली आये। भौजी कहाँ हिन?
5: वही खटिया पर सूती हिन बहिनी, वहारे चला जाए ना।
4: भौजी आपका कहाँ डसिली? घर के आसपास साफ सुगर रखा गया है, तब वो आपका सपोर्ट दसिलीस।
6: हाँ बहनी, यही एरिया से ऊपर दसिस है। आपके भैया एम्बुलेंस का खबर तो कहीं है, पता नहीं कब आई।
4: ना घबरा जाए भौजी, हमरे साथ में हन, आपका कुछ नहीं हुई, बल्कि गोर ना चलावा जाए। और नरेश भैया, एम्बुलेंस आवे के समय लग सकत है, नक्सरवे की केहू के मोटरसाइकिल है तो वही पर लेके भौजी का सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के तैयारी करा जाए।
5: यही समय पर खाए वाला चीज नहीं देख चाहिए स्वयंसेवी बहिनी।
4: जी हाँ, चिकित्सक जब तक न कहे तब तक बीमारिया का कुछ खाए के नहीं दे के चाहिए।
7: सांप दस लिए के बाद सहज वातावरण बनावे और सांप दस लिए अंग का स्थिर बनावे के प्रयास करे के चाहिए। फटी बांध के सांप दस लिए जगह का ढेर हिले से रोक सका जात है। कसा कपड़ा, गहना जेवर, घड़ी, पेटी, अंगूठी आदि खोल दिए या ढील कर दिया जाए। बीमरिया अकताए गए पर और समस्या हुए के नाते बीमरिया का शांत रहे के सहयोग करे के चाहिए। कितना पे लोग सांप दस लिए जगह से ऊपर रसरी से कस के बांधे के काम करत हैं। ऐसन करत के रक्त संचार में समस्या हो सकत है, जौने से सांप दस लिहा शरीर के भाग काट के फेंके के अवस्था समेत आ सकत है।
8: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जात है।
9: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
10: तपाईँको फोन आउने बित्तिकै म दौडेर आएँ कि। खै भाउजू कता हुनुहुन्छ?
11: त्यहाँ फलैचामा सुतेकी छिन् बहिनी, हिँड्नुहोस् न उतै।
10: भाउजू कहाँनिर टोके तपाईँलाई? घर वरिपरि त सफा सुग्घर राख्नु भएको रहेछ, तर पनि टोक्नु भ्याएछ है तपाईँलाई?
12: यहाँ कुर्कुचानीले टोकेको हो नानी, उहाँले एम्बुलेन्सलाई खबर त गर्नुभएको छ। कति बेरमा पो आइपुग्ने हो?
10: नआतिनुहोस् है भाउजू, हामी छौ, तपाईँलाई केही हुँदैन, बरु खुट्टालाई नहल्लाउनुहोस्। र नरेश दाइ, एम्बुलेन्स आउन समय लाग्ने हुन सक्छ, नजिकै कसैको मोटरसाइकल भए त्यसैमा राखेर भाउजूलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र लाने तयारी गर्नुपर्छ।
11: यति बेला त खानेकुरा पनि दिनु हुँदैन होइन त स्वयंसेविका बहिनी?
10: हो हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, चिकित्सकले नभनेसम्म बिरामीलाई केही पनि खुवाउनु हुँदैन।
13: सर्पले टोक्ने बित्तिकै सहज वातावरण बनाउने र सर्पले टोकेको अङ्गलाई स्थिर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। टम्म कसिएको कपडा, गरगहना, घडी, पेटी, औठी आदि भए फुकाली दिएर खुकुलो गराउनुहोस्। बिरामी आत्तिए झन समस्या हुने भएकोले बिरामीलाई शान्त रहन सहयोग गर्नुपर्छ। कतिपयले सर्पले टोकेको ठाउँ भन्दा माथि डोरीले कसिलो गरी बाँध्ने पनि गर्छन्। यसो गर्दा रक्त सञ्चारमा समस्या हुन सक्छ, जसले गर्दा सर्पले डसेको शरीरको भाग काटेर फाल्नु पर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ।
1: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
9: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: 89.6 MHz।
1: हिमाल पहाड़ तराई।
2: प्रिय श्रोता, अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम जागृति। कार्यक्रम सुनेर आश्वासित हुनुहोस्।

कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आइरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाने हो हर एक 15 दिन में क्रम्पटन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनी नागरिकता मात्र भाई पुख्स सहज ईएमआई मार्फत खरीद करना सकिन्छ।